0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है, इनकी यथासंभव रोकथाम और

0: सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अकराशे 43 किलोहर्ट्स या मध्यम लहरी वाहिनीवर आम्ही बोलत आहोत आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून। ऐकूया आजचा सुविचार। भगवान महावीर म्हणतात, अंतःकरण स्वच्छ ठेवण्याकरिता नियमितपणे ईश्वर प्रार्थना केली पाहिजे। आजचा सुविचार आपण ऐकला। आता प्रसारित करत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय

0: प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4th चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए

0: अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर

0: किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रामनगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग कीपिंग द नीड्स ऑफ फार्मर्स इन माइंड।
1: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
0: द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2019, सो फॉर मोर देन 4,47,000 crore रुपीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स थ्रू 23 इंस्टॉलमेंट्स। मोर देन 9,49,00,000 फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द 23rd इंस्टॉलमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीएम किसान स्कीम फ्रॉम 2026-27 टू 2030-31। छिंदवाड़ा फार्मर बसंत पटेल सेड दैट फार्मर्स आर हैप्पी विद द डिसीजन टू कंटिन्यू द स्कीम फॉर 5 more years।
2: सरकारी योजना जो है,
3: वी आर वेरी हैप्पी दैट द किसान सम्मान निधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 more years। द स्कीम इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। इट हेल्प अस इन बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड इज आल्सो यूजफुल ड्यूरिंग द स्विंग सीजन। वी थैंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट।
2: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वुमेन फार्मर्स हैव आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम। द स्कीम यूजेस डिजिटल वेरिफिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू सेंड द मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स। फॉर आकाशवाणी न्यूज, आई एम विपिन मिश्रा फ्रॉम भोपाल।
4: After the wait of centuries, the construction of the Grand Ram Temple is ushered in a new chapter for Ayodhya, the city of Lord Ram, placing it prominently on the global map of religious tourism and development. With the efforts of the central and state governments, Ayodhya has witnessed a new era of development and has once again emerged as a major global center of the Sanatan Dharma. We have a report.
5: The transformation of Ayodhya, the city of Lord Ram, gained momentum after the change of government at the center in 2014 and the formation of the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh in 2017. While the Supreme Court verdict paved the way for the construction of the Grand Ram Temple, initiatives such as the Potsav celebrations has also begun restoring Ayodhya's lost cultural and religious grandeur. Following the consecration of Ram Lala in Ayodhya in the presence of Prime Minister Narendra Modi, the city has increasingly emerged on the global stage as a symbol of religious tourism, Sanatan culture and development. It was from this very city of Lord Ram that Prime Minister Narendra Modi called upon the people to awaken the values of Lord Ram within themselves if India is to become a developed nation by 2047.
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
5: मेयर ऑफ अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिरीश पति त्रिपाठी सेड that following the construction of the Ram Temple, Ayodhya has witnessed significant changes in the cultural, social and economic areas in line with Prime Minister Narendra Modi's vision.
6: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
5: Today, Ayodhya is not merely a center of faith, but is also setting new benchmarks in religious tourism, connectivity, and employment opportunities. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
4: This is Akashwani giving you the news.
7: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
4: U.S. President Donald Trump has said that he is in deciding mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it has shared its conditions with Washington through mediators for reopening the Strait of Hormuz. Trump's comments come ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's expected visit to New York to attend the United Nations General Assembly. A senior delegation is likely to accompany him. Trump told a TV channel that very big things are going to be happening in the not-so-distant future if the Iranian regime does not behave. He reportedly discussed 3 possible options for the war: wiping Iran out, letting them rot economically, or making a deal. The United States has issued a security alert for its mission in Saudi Arabia, requiring U.S. government employees working in the country to obtain special authorization for all official and personal travel to cities on the Taif and Yanbu. U.S. mission in Saudi Arabia said that restrictions were imposed due to the ongoing security situation and urged American citizens in the kingdom to remain vigilant and follow

0: श्रोतेहो नमस्कार. इंद्रधनुष्य या कार्यक्रमात मी रेडिओ सखी कश्मीरा सावंत आपलं मनपूर्वक स्वागत करते. श्रोतेहो, शिक्षण म्हणजे केवळ ज्ञान मिळवण्याचा प्रवास नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा देण्याचा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आकार देण्याचा हा एक प्रवास आहे. आपल्या रत्नागिरीमध्ये लवकरच केंद्रीय विद्यालय सुरू होत आहे आणि याच निमित्ताने याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये या विद्यालयाचे प्राचार्य अरुण कुमार उपस्थित आहेत. नमस्ते सर.
1: जी नमस्कार. आकाशवाणी रत्नागिरी और इंद्रधनुष कार्यक्रम का हृदय से आभार कि आपके माध्यम से मुझे रत्नागिरी क्षेत्र के सभी श्रोताओं से संवाद करने का अवसर मिला. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
0: सर, सबसे पहले हमें जानना है कि केंद्रीय विद्यालय ये संकल्पना क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है.
1: केंद्रीय विद्यालय विद्यालय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल है. और मैं अगर इसकी संकल्पना की बात करूं तो यह एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षिक व्यवस्था विकसित करने की सोच है, जिससे विशेष रूप से जो हमारे स्थानांतरण केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा, अर्धसैनिक बलों के तथा निर्धारित वर्गों के बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा की निरंतरता मिल सके. केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य केवल एक समान पाठ्यक्रम चलाना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, नवाचार, मूल्य आधारित शिक्षा और विद्यार्थियों की प्रतिभा का एवं रचनात्मकता का विकास करना भी है. केवीएस के अगर मैं आधिकारिक विजन की बात करूं तो उसमें नॉलेज, वैल्यूज, टैलेंट, एंथुसियाज्म और क्रिएटिविटी को विकसित करने के ऊपर बल दिया जाता है. अगर मैं पूरे देश भर में फैले हुए केंद्रीय विद्यालयों की बात करूं कि उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो उन विशेषताओं में हम लोग CBSE आधारित शिक्षा, NCERT के द्वारा डेवलप किए गए पाठ्यचर्या, को एजुकेशनल एनवायरनमेंट, गतिविधि आधारित शिक्षा एवं अनुभव आधारित अधिगम, साथ ही खेल कला को महत्व देते हुए ICT के प्रयोग पर आधारित शिक्षा को बल देते हैं. यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को एक साथ सीखने का अवसर भी प्रदान करता है. तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि विशेषता क्या है, तो इंटीग्रेशन और समावेशीकरण, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है.
0: अच्छा, तो रत्नागिरी में केंद्रीय विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर स्थापित हो रहा है?
1: रत्नागिरी क्षेत्र और यहाँ स्थापित होने वाले सिविल क्षेत्र के विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमें नाचने के अंदर लगभग 6.2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवाई गई है. ज़मीन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम करवाई जा चुकी है, जिसके ऊपर अति शीघ्र ही केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनने वाली है. वर्तमान में हमारा जो विद्यालय है उसके लिए हमें अस्थायी रूप से लोकमान्य तिलक नगर परिषद शाला नंबर 2 का परिसर दिया गया है, जहाँ इस समय हम अपना विद्यालय संचालित कर रहे हैं और हमारी प्रवेश प्रक्रिया उसी जगह पर अभी चल रही है.
0: सर, अभी आपने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये प्रवेश प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं?
1: जी देखिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पूरी तरीके से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा निर्धारित एडमिशन गाइडलाइन होती है और जो एडमिशन शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है. अगर मैं प्रक्रिया को और थोड़ा सा विस्तार में जाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, एप्लीकेशन कैटेगराइजेशन प्रायोरिटी निर्धारित की जाती है, उसके बाद सिलेक्शन जो है ड्रॉफ लॉट वगैरह पर जो भी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वो एडमिशन के इस प्रोसेस में शामिल होती हैं. अगर मैं देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में बात करूँ तो कक्षा 1 और बालवाटिका 1, 2, 3 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है.
0: अच्छा.
1: और सत्र 2026-27 के अंदर भी ये प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन वर्तमान में चूंकि हमारा विद्यालय अभी जुलाई माह के अंदर ही अस्तित्व में आया है, तो हमारे यहाँ अभी जो प्रवेश

0: प्रक्रिया कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ऑफलाइन जारी है, जो 25 सितंबर तक जिसके पंजीकरण हम अपने विद्यालय के अंदर कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं और इसके डिटेलिंग में जाऊँ तो कक्षा 1 के अंदर हम RTE के जो प्रोविजन्स हैं, राइट टू एजुकेशन के अंडर जो भी प्रोविजन्स हैं, उनका हम अक्सर से पालन करते हैं और रिजर्वेशन का भी हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। अगर मैं एक प्राचार्य के रूप में देखूं कि मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो एडमिशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइन का पूर्णतः और विधिवत पालन हो, यही मेरी प्राथमिकता है।
1: अच्छा सर, क्या KVS में एडमिशन सभी बच्चों के लिए खुला है?
0: जी, केंद्रीय विद्यालय के अंदर प्रवेश सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन प्रवेश को विनियमित करने के लिए हमारी एडमिशन गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित की गई है।
1: अच्छा।
0: अभी वर्तमान में 2026-27 हेतु जो प्रवेश मार्गदर्शिका है, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है और हम उसी के अनुसार प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको और विस्तार से बताऊं, तो चूंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में जब स्थापित हुए थे तो वहाँ ट्रांसफरेबल जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, तो उनके साथ साथ जो स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ट्रांसफरेबल हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफरेबल हैं, उन सभी के लिए यहाँ प्रायोरिटीज़ निर्धारित की गई है। तो एडमिशन तो सभी के लिए ही ओपन है, लेकिन उसमें प्रायोरिटीज़ की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम दिशा निर्देशानुसार जो गाइडलाइंस है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम एडमिशन्स करते हैं।
1: अच्छा सर, रत्नागिरी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अन्य स्कूल्स और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा में क्या फ़र्क है।
0: मैं इसे कौन बेहतर है के रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि KVS की अपनी विशिष्ट एजुकेशन फिलॉसफी है जो कि हम देश भर में इसका पालन करते हैं। यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि फ़र्क क्या है, यहाँ मैं सिर्फ प्रश्न को इस तरीके से लेना चाहूँगा कि हम किस प्रकार की विशेषताओं के साथ शिक्षण व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। हम कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन लेकर के चलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, ट्रांसफरेबल जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों के लिए कंटिन्यूटी, CBSE NCERT आधारित अकेडमिक फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, अकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे अभी हम क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं, उसका हम बैलेंस बना करके चलते हैं, अनुभव आधारित अधिगम और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर हम फोकस करते हैं। इसके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के बच्चों को एक साथ एक जगह सीखने के अवसर यहाँ मिलते हैं, इसे हम मिनी इंडिया के रूप में भी देख सकते हैं। KVS का मिशन स्कूल एजुकेशन में एक्सीलेंस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अन्य विद्यालयों से कुछ अलग बनाती हैं।
1: अच्छा, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो इसके अनुसार बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो केंद्रीय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों को विकास में किस प्रकार की मदद करता है?
0: जी बिल्कुल, देश भर में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है कि शिक्षा केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूँ कि कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, क्रिएटिव और एथिकल डेवलपमेंट, ये NEP का दृष्टिकोण है जिसको हम अक्सर से केंद्रीय विद्यालय के अंदर पालन करते हैं। NEP 2020 के अंदर रोटे लर्निंग से हटकर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग हाउ टू लर्न और 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर जोर दिया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ अभी संचालित है।
1: अच्छा।
0: अगर आप देखेंगे तो KVS में यह दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमों से आपको दिखाई भी देगा, जैसे कि अकेडमिक लर्निंग की अगर हम बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ICT, वैल्यूज, लाइफ स्किल एंड क्रिएटिविटी। इसलिए विद्यार्थियों को हम केवल एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे हम रियल लाइफ सिचुएशंस में अपने ज्ञान का, सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कैसे करें, ये सिखाने पर भी हम बल देते हैं।
1: अच्छा, मैं भी इसी बात में आने वाली हूँ कि NEP के अनुसार विद्यार्थियों के लिए केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, स्किल बेस्ड नॉलेज भी उतना ही आवश्यक है, तो इस दिशा में केंद्रीय विद्यालय

0: विद्यालयों की भूमिका क्या है?
1: जी बिल्कुल, अगर आज के समय में हम देखें तो बच्चे को केवल व्हाट टू लर्न नहीं बल्कि हाउ टू अप्लाई व्हाट यू लर्न भी आना चाहिए। अब हम KVS में क्या करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, वोकेशनल एक्सपोजर, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जैसी अप्रोच, ये इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। NEP 2020 के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्किल्स और करियर पॉसिबिलिटीज से परिचित कराने पर जोर देती हैं। मैं इसे 3 शब्दों में डिफाइन करना चाहूँगा, नॉलेज, स्किल एंड एप्लीकेशन, यानी ज्ञान प्राप्त करना, स्किल डेवलप करना और उसे वास्तविक जीवन में लागू करना।
0: सर, अभी आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात की, तो हम जानना चाहते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता क्या है?
1: देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अर्थ है करके सीखना, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि विज्ञान में जैसे केवल पुस्तक से पौधों के बारे में पढ़ाने की बजाय विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में लगे हुए पौधों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहें, उनका क्लासिफिकेशन और उनकी ग्रोथ को रिकॉर्ड करने के लिए कहें, तो इससे बच्चा जो है वो कनेक्ट करेगा अपने आप को कि हाँ, ये पौधा है, ये इसका नाम है, ये इसकी ग्रोथ है, ये इसकी लीव जो है उसका प्रकार है। तो जब वो स्वयं उसको करके सीखने लगेगा, यही हमारे लिए एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव आधारित अधिगम है। इससे विद्यार्थी जो है थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उस थ्योरेटिकल नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ पाता है। क्योंकि अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन लर्नर सेंटर्ड एक्सपीरियंशियल अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है, तो ये हम अपने एजुकेशन में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो क्या इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है?
1: जी बिल्कुल, अभी मैंने क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ की बात की, जिसे पूर्व में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे। KVS के अंदर पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सभी को वर्तमान में एजुकेशन का हिस्सा बना दिया है, हॉलिस्टिक एजुकेशन, और इसको इंटीग्रल कंपोनेंट का एक पार्ट जो है हमने अभी बनाया है। NEP 2020 के अनुसार हम विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट, म्यूजिक, डांस, कल्चरल एक्टिविटीज, स्काउट एंड गाइड, एग्जीबिशन, क्विजेज, डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग तथा विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं।
0: अच्छा,
1: इससे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी डेवलप होती है। मैं मानता हूँ एवरी चाइल्ड मे नॉट बिकम ए टॉपर इन अकेडमिक्स, बट एवरी चाइल्ड कैन डिस्कवर एन एरिया इन विच ही और शी कैन एक्सेल। बीइंग अ प्रिंसिपल, मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर मिले।
0: शहर के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ गांव के विद्यार्थियों को भी समान शिक्षा का अवसर मिले, इसलिए केंद्रीय विद्यालय की क्या भूमिका है?
1: देखिए, केंद्रीय विद्यालय का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। जहां KV स्थापित होते हैं वहां वे आसपास के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्कूल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि KVS एडमिशन प्रेस्क्राइब गाइडलाइन और प्रायोरिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए इसे हर बच्चे को स्वतः एडमिशन देने वाली व्यवस्था के रूप में नहीं समझना चाहिए।
0: अच्छा,
1: रही बात कि ग्रामीण विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के समान अवसर मिले, तो मैं बताना चाहूँगा कि KVS जो है अपने अकेडमिक एनवायरनमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स, डिजिटल रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज और विविध गतिविधियों के माध्यम से जो आसपास के हमारे एजुकेशनल इकोसिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि KV जो हैं वो एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में लिए जा सकते हैं, तो बाकी सराउंडिंग्स भी जो है केंद्रीय विद्यालय के एटमॉस्फेयर से सीख सकते हैं।
0: तो जल्द ही केंद्रीय विद्यालय रत्नागिरी में शुरू होने वाला है, तो इस माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों को किस प्रकार की नई शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकती हैं?
1: रत्नागिरी में केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, विद्यालय तो खुल ही चुका है और यहाँ अगर केवी शुरू होता है तो विद्यार्थियों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने का अवसर मिलेगा

0: जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ आधुनिक टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, डिजिटल लर्निंग, लाइब्रेरी बेस्ड लर्निंग, स्टेम की एक्टिविटीज़, STEM की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़, अनुभवात्मक अधिगम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, करियर अवेयरनेस और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जैसे अवसर मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय एक बिल्डिंग नहीं है, वह एक एजुकेशनल इकोसिस्टम है। जब हमारा स्थायी परिसर यहाँ डेवलप होगा, तब लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्टिविटीज के स्पेसेस के साथ साथ अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी एक केंद्रीय विद्यालय के अनुरूप होंगे, वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी परमानेंट बिल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है रत्नागिरी क्षेत्र के वासियों के लिए कि वे केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस सिस्टम को समझें और अधिक से अधिक प्रवेश हेतु हमारे विद्यालय में पहुँचें।
1: अभी आपने डिजिटल लर्निंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो इसका विद्यार्थियों के शिक्षा में किस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है?
0: देखिए, NCERT के साथ मिलकर के अभी एजुकेशन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, जिसमें हम चाहे दीक्षा को ले लीजिए, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्वयं है, मूक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी सामग्री वहाँ पर ऑनलाइन रूप में अवेलेबल है।
1: अच्छा,
0: हम अपने विद्यालयों के अंदर हमारे यहाँ 100% ई क्लासरूम सेचुरेशन की व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय संगठन कर रहा है, यानी कि हमारे विद्यालय के कक्षा कक्ष ई कक्षा कक्ष के रूप में डेवलप होंगे, जहाँ इंटरेक्टिव पैनल या अन्य इस तरह के डिजिटल रिसोर्सेज के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। शिक्षा जो परंपरागत तरीका है, हम उस परंपरागत तरीके से उसको निकाल करके 21वीं सदी के कौशलों के साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो यही जो डिजिटल लर्निंग है या टीचिंग लर्निंग जो प्रैक्टिस है, इसके लिए हम अपने टीचर्स को प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की CPD ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, तो ये मैंडेटरी है, जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो भी टीचर है, सभी के लिए मैंडेटरी है। इवन दो इवन प्रिंसिपल्स के लिए भी, मेरे लिए भी है कि मुझे भी प्रत्येक वर्ष में 50 घंटे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग जो है हासिल करनी ही करनी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इससे हम डिजिटल लर्निंग को आसान और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक बना सकते हैं।
1: अगर हम केंद्रीय विद्यालय के विजन और मिशन को व्यापक दृष्टि से देखते हैं, तो रत्नागिरी में शुरू होने वाला ये विद्यालय यहाँ के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास में किस प्रकार का योगदान दे सकता है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने किया है। देखिए, KVS का जो विजन, नॉलेज है, वैल्यूज़ के साथ साथ टैलेंट, एंथुसियासिज्म तथा क्रिएटिविटी को नर्चर करना है। इसके मिशन में हम एक्सीलेंस, इनोवेशन और नेशनल इंटीग्रेशन को जो है स्पष्ट रूप से स्थान देते हैं। यही केंद्रीय विद्यालय संगठन का मिशन भी है। अब रत्नागिरी में इसका प्रभाव, मैं इसको अगर तीन स्तर पर देखूं, जैसे कि पहला एकेडमिक्स, तो विद्यार्थियों को स्ट्रक्चर्ड, क्वालिटी ओरिएंटेड और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन मिलेगी। दूसरे स्तर पर अगर मैं देखूं सोशली, तो यहाँ विभिन्न बैकग्राउंड्स के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, इससे इंक्लूसिवनेस, कॉपरेशन और नेशनल इंटीग्रेशन की भावना विकसित होगी। तीसरा अगर मैं आकर देखूं कि कम्युनिटी लेवल पे जो है, तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर विद्यालय, पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एजुकेशनल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, रीडिंग कल्चर और स्टूडेंट डेवलपमेंट की एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार KV नास ने रत्नागिरी केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि रत्नागिरी के एजुकेशनल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट बन सकता है।
1: अभी जो पेरेंट्स ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, उनको आप क्या बताओगे कि अपने बच्चों के लिए वे केंद्रीय विद्यालय क्यों चुने?
0: मैं पेरेंट्स को सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि स्कूल चुनते समय केवल बिल्डिंग या एग्जामिनेशन रिजल्ट न देखें, यह देखें कि विद्यालय आपके बच्चे के एकेडमिक, इमोशनल, सोशल और क्रिएटिव डेवलपमेंट में कितना योगदान दे सकता है। KVS में पेरेंट को एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स, CBSE बेस्ड करिकुलम, CLA अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटी अपॉर्चुनिटीज, स्पोर्ट्स, वैल्यूज और नेशनल इंटीग्रेशन

0: का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट ये भी करते हुए जाऊँगा कि एडमिशन जो है स्ट्रिक्टली KVS एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चे को केवल मार्क्स के लिए नहीं बल्कि सीखने, सोचने, सृजन करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार कीजिए, और केंद्रीय विद्यालय नाचने रत्नागिरी इसी व्यापक उद्देश्य को लेकर के काम करेगा।
1: अच्छा, रत्नागिरी में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहा है, ये सिर्फ एक नए स्कूल की शुरुआत नहीं है बल्कि रत्नागिरी के शैक्षणिक क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
0: बिल्कुल, मेरे विचार से रत्नागिरी में KVS की स्थापना का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ एक नया स्कूल जुड़ रहा है। इसकी वास्तविक सिग्निफिकेंस यह है कि एक क्वालिटी, कंटिन्यूटी, इनोवेशन और नेशनल इंटीग्रेशन पर आधारित एक नई एजुकेशनल कल्चरल को आगे बढ़ाने का अवसर है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थायी कैंपस के लिए हमको 2.5 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र सरकार ने जो दी है, इसके ऊपर हमारा विद्यालय डेवलप होगा। वर्तमान में अभी हम लोकमान्य तिलक नगर परिषद शाला क्रमांक 2 के अंदर ये विद्यालय संचालित कर रहे हैं। आगे चलकर के ये स्कूल जो है केवल एक स्कूल नहीं, लर्निंग कम्युनिटी, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप होगा। प्राचार्य के रूप में अगर मैं कहूँ तो केंद्रीय विद्यालय नाचने रत्नागिरी एक ऐसा विद्यालय बने जहाँ रत्नागिरी की स्थानीय संस्कृति, प्रकृति के साथ आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, स्पोर्ट्स और वैल्यूज का बेहद सुंदर समन्वय हो।
1: सर, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि रत्नागिरी के लोगों को KVS नाचने रत्नागिरी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे?
0: जी, केंद्रीय विद्यालय नाचने रत्नागिरी केवल एक नए विद्यालय की शुरुआत नहीं है, यह एक नई शैक्षणिक संभावना की शुरुआत है जिसमें हमारा उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अपनी प्रतिभा पहचानने, अपनी क्रिएटिविटी विकसित करने, स्किल सीखने और जिम्मेदार नागरिक बनने का अवसर मिले। हम KVS की उत्कृष्ट परंपरा को रत्नागिरी की स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और समुदाय के साथ में जोड़ना चाहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और कम्युनिटी मिलकर एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं जहां बच्चे केवल अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक भी बने। मेरे लिए यही KVS का वास्तविक विजन है, क्वालिटी एजुकेशन विद वैल्यूज, क्रिएटिविटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एट KVS नाचने रत्नागिरी वी डू नॉट मेयरली टीच लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, वी इग्नाइट क्यूरियोसिटी, बिल्ड रेजिलियंट कैरेक्टर एंड प्रिपेयर लीडर हु विल कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू अवर नेशन। तो यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें एक केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से रत्नागिरी से जुड़ चुका है। आप अपने बच्चों को एक ऐसी विद्यालय चयन के साथ जोड़िए जिसके वर्तमान में लगभग 1370 विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं। इन 1370 विद्यालयों में लगभग 14 लाख से अधिक छात्र अभी लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 56,810 कर्मचारी इस केंद्रीय विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं।
1: अच्छा,
0: और अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में यही समान शिक्षा का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो विद्यार्थी को इस तरीके से पूरे भारतवर्ष की संस्कृति के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक व्यक्ति, जो पंजीकरण प्रक्रिया अभी हमारी 25 सितंबर तक है, तो इसमें वे भाग लें और अपने बच्चे को एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान से जोड़ने की पहल करें। यह एडमिशन अभी हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक संचालित कर रहे हैं।
1: सर, इस बातचीत से केंद्रीय विद्यालय का जो विजन है, मिशन है, शिक्षा पद्धति है और NEP से उसका जुड़ना है या फिर इस माध्यम से रत्नागिरी के बच्चों का जो भविष्य है, इस सब के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दे दी। इसके लिए आकाशवाणी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस बातचीत के लिए आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: श्रोतेहो, रत्नागिरीमध्ये सुरू होणारं केंद्रीय विद्यालय ही फक्त एक नवीन शैक्षणिक संस्था नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो

0: तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
0: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
0: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
0: तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
0: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
0: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
0: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
0: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
0: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमरीका बना। ये वही अमरीका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके

0: गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा,
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने कहा।
2: अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गाँव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो
2: माँ, एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ, कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
0: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
1: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
0: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।

0: माँ माँ माँ।
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
2: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
3: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
3: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
2: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
3: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
2: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
3: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
4: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
3: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा

0: गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
1: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
1: ध्यान देना।
0: रक्कास,
1: नाचने वाला।
0: ताब,
1: ताकत, बर्दाश्त।
0: हिंसा,
1: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे?
1: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
1: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
1: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: NCERT चा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण ऐकला आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावरून।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और

0: सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगनाना सम्बंथम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का सिलसिला जारी है। हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश बालासाहेब पाटिल और पार्थ राकेश माने की भारतीय टीम ने आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एकशे 1.5 मेगाहर्ट्स या FM वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवर श्रोतेहो आपण ऐकताय आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्राचं प्रसारण। ही आहे आमची पहिली प्रसारण सभा। 11:05 आणि 29 सेकंद झाली आहेत। आता प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल।

0: सूत्रनिवेदन आणि निर्मिती सहाय्य ऐश्वर्या पटवर्धन, सादरकर्त्या तेजा दुर्वे. ही आकाशवाणी सांगली केंद्राची निर्मिती होती.
1: हा कार्यक्रम मुंबई केंद्रावरून पुनःप्रसारित करण्यात आला. 2:15 थोड्याच वेळात ऐकूया दोपहर समाचार हिंदीतून बातम्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण. दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा. विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना. और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए. सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा. नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा.
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी.
2: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे. ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है. नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही. सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं.
5: Today we have around 1150.
6: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं. ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं. अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा.
5: Which will make a big change in times to come.
2: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है.
5: India today has risen from the.
6: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था. दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं.
5: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
2: सुश्री पटेल

0: लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
1: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदे। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
4: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक

0: विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सूचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता

का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: असौ उक्तवान् यत् एषा रणनीतिक सहमतिः उभयोः देशयोः मध्ये सहकारम् अधिकं सुदृढीकर्तुं विद्यमानानां प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। अपि च आगामि चतुःपञ्च वर्षेषु वस्तूनां सेवासु च द्विपक्षीय व्यापारस्य मूल्यं प्रायः 35,000 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः मुक्त व्यापार सन्धेः प्रवर्तनेन एतत् लक्ष्यं सुदृढार्थिक परिणामेषु परिवर्तितं भविष्यति।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तुशिल्पकारेभ्यः च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सः सूचितवान् यत् न्यूजीलैण्ड देशेन अस्य सन्धेः अन्तर्गतं भारतदेशे 2,00,000 कोटिरूप्यकाणां प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेशाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता अस्ति।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ
0: अयं सन्धि भारतीय निर्यातेभ्यः वस्त्र परिधानयोः औषधीनां कृषिजन्यवस्तूनां प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थानां चादिषु क्षेत्रेषु नूतनान् अवसरान् उद्घाटयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अद्य उक्तवती यत् औषधि सुरक्षा निरीक्षणस्य क्षेत्रे भारतस्य वर्षेभ्यः यात्रा स्वावलम्बनस्य महत्वपूर्णम् उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः 7वें संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,00,000 प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000,000 तमे वर्षे 23,000,000 आसीत्, यत् स्थानं 25,000,000 तमे वर्षे अभिवर्ध्य 8वें जातम्।
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
0: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारी वर्यः 21,000,000 तमे वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के

0: पहचान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
1: सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उप प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
3: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है। डिजिटल

0: सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की तीन परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
2: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
0: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर

0: program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight. समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, या कहिए कुछ अंतराल के बाद, सरकार का ये कदम जो है वो देश के संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना जा रहा है। अब तक जो कर्मचारी एक निश्चित सैलरी ब्रैकेट से बाहर होने के चलते PF और पेंशन के फायदों से वंचित रह जाते थे, उन्हें अब एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी मिलेगी। लेकिन इस वेज सीलिंग के बढ़ने से आपकी इन हैंड सैलरी पर क्या असर होगा? आपकी कंपनी के योगदान में अचानक क्या कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है? जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं, और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 0112331048। अगला नंबर है 2371717 2371710 6 और 2331444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं, NCR के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि WhatsApp नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का, और हम आपको फिर से विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीलिंग रेडिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड EPF का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी, आप रमा शंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
2: तो इससे इनके EPF का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, EPF का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, EPF के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
2: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
2: रहेगा
0: रमा शंकर जी का। जी सर,
1: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। EPFO जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय सरकार का एक

0: स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है ये हमारे पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं हर महीने। हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है ये आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
1: तो रमाशंकर जी आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं और बहुत तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते कि जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा।
0: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कंट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है आपके एम्प्लॉयर जो है वो अपने तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा ये 3,000 जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000 टोटल 6,000 रुपए कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीमा वेज सीलिंग पे था अब बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर 20,000 कमा रहे थे तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। दे ये वॉलंटरी अपना वॉलंटरी स्वेच्छा के तरह से अगर कंट्रीब्यूट करें तो अलग बात है लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
1: जी हाँ। और देखिए एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर राशिद अहमद खान। राशिद साहब क्या सवाल है आपका बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
1: नमस्कार। नमस्कार
2: आप सभी लोगों को पूरे देशवासियों गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: जी सर दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है एक कंपनी में काम कर रहा है तो बाई दफे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका ये चेंज हो जाता है एक बार। दूसरी बात जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी 12% नियोक्ता इसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या या मतलब फिक्स है ये नियम ये बताना सर प्लीज।
0: धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें यह बताना चाहूंगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको वो यूएएन बोलते हैं वो कंटिन्यू रहेगा, एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपने

0: यूएन और दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है पीएफ काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है? नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है अब अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट, जिसको बोलते हैं जॉइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं आपका और आपके नियोक्ता का जॉइंट कंसेंट के साथ, मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
1: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
0: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग, वेज सीलिंग था, तब आपका जो 12% है वो 1,800 था। अब जब 25,000 हो गया, तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 पीएफ का वेजेस है, तो पहले वो 1200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली, जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, तो उनका जो है पहले अगर वो वॉलंटरी स्वेच्छा अपने इच्छा से ज़्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे और जो पहले पीएफ के बाहर थे कम्प्लीटली, जो जिनका पीएफ कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका पीएफ कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपया वेतन रहा, तो उसको 2400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 20,000 है, 20,000 में से अगर 2400 आपका डिडक्शन हो जाता है, तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2400 है, ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके पीएफ के खाते में जमा हो रहा है। और पीएफ के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे किसी भी कारणवश अगर आपको जरूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये पीएफ के अकाउंट में है और पीएफ का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये प्राय ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं, या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
0: देखिए, हमारे जो जो प्रावधान है, दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस, या जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पीएफ खाता है उसमें से 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है, दोनों का मिला के जो भी आपका उसमें आपके बैंक अकाउंट, पीएफ अकाउंट में जो खाता में जो राशि है, वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ की वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए या किसी भी वजह से आपको चाहिए, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया, तो आप एक साल से जॉब से वंचित हैं, तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप एक साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये रिटायरमेंट तक वेट करने की एक वर्ष हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश, तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं। जबकि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उससे

0: पहले 75% तक निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं, पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है, और या
1: हाउसिंग
0: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे हैं,
1: या बीमारी कोई भी,
0: या कोई रोग है, तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं, MSME, जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे?
1: देखिए, EPF में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफगार्ड यहाँ पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये PF वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट, अभी तो जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो
0: जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं,
1: जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो PF एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं, एक समझ लीजिए एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना उससे अगर 6,000 रुपया आपका 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,006 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो एक साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000। और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना विड्रॉल के आप जमा करते हैं 30-35 साल तक, तो करीबन आपके 7% कम भी आप लेके इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले PF में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था अब 25,000 पे कटवाना है तो 1200 रुपये का एडिशनल उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूंगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना, वो यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि आप अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहे, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे,
0: लाभ दे सकते हैं
1: तो फिर उतना आपके साथ वो जुड़ के काम करेगा।
0: जी, हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं सासाराम बिहार से, अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए PF अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो PF अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी उपभोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, उसमें होता है PPF अकाउंट, जो PF और PPF में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
1: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि EPF में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये

0: जो पैसा है 55 साल तक जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है तब तक आप अपना सेविंग से पीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। इसमें से जब चाहे जैसे मैंने कहा अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है नोटिफाई किया है उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको किसी और रीजन से भी आपको निकालना है पैसा तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 इयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा। आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है। तो इसमें बैंक से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा। सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं। इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफ़ी कम मिलता है आपको और ये हर 5 साल 15 साल तो रहता है उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जबकि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता जो हैं वो भी 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये डिफरेंस है।
1: जी जी जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो इसमें हम निवेश करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है, ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं। अगर कम ब्याज मिला हमको कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है ज़्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है और इसका जो भी राशि है आपका पीएफ बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर

0: में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं और लोग परिश्रम अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं. तो ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है तो वो कई बार होता है कि दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं. तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसका उसकी व्यवस्था है तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
1: ज़रूर. ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह कुछ काम कर लेते हैं शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं, तो अगर दोनों जगह से उसका पीएफ अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा. दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा. इसमें कोई भी हमारे तरफ से पीएफ ईपीएफ कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है. ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये जमा हो सकता है.
0: ये नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कि यदि उन्हें ये आपत्ति नहीं है कि आप दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते और वो लेकिन स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो वो वही रहेगा. लेकिन
1: वो यूएएन नंबर एक आदमी का हमेशा वो परमानेंट है. हाँ. वो यूएएन नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको यूएएन नंबर देना है.
0: जी जी जी. और इसमें एक और जो प्राय एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है काम करते हुए और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफ़ी जटिल हो जाती है. उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए कृपया.
1: तो ये आपने से अच्छा सवाल पूछा है. तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ तो उससे ना ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और ईडीएलआई दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा. तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था. इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था. वो ही वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था. अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में पेंशन खाते में चला जाता है. अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है. तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें. और जैसा कि आपने कहा कि ईडीएलआई जो हम बोलते हैं एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट ईडीएलआई में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा. अच्छा, इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तब तुरंत जो नॉमिनी को पूरा पैसा ईडीएलआई का इमीडिएटली मिल जाता है. उसको अगर ई नॉमिनेशन किया हुआ है तो उसको क्लेम फॉर्म एक भरना है और क्लेम फॉर्म के भरते ही उसको पैसा मिल जाता है. तो ये एक एडिशनल फायदा है. अगर 25,000 तक का वेज सीलिंग है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉई पे 33 साल काम करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन जो है 12,500 रुपये अगर वो 25,000 पे कंटिन्यूसली पे कर रहा है तो उसको पेंशन 12,500 रुपये का.
0: लेकिन क्या केवल नॉमिनी का नाम भर देना ही पर्याप्त है या वो ई साइन होना चाहिए इस विषय में?
1: नहीं, तो मेंबर को ई साइन करना पड़ता है और नॉमिनी का आधार भी उसको देना पड़ता है.
0: जी जी जी जी. तो ये जानकारी तो काफी महत्वपूर्ण रही और मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें जरूर मिले होंगे. और दोस्तों, अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का. हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और इसके साथ ही दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है. अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्य

0: We now bring you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रॉ में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
3: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कंपटीशन to China's Zhang Jiao. Magar Rudansh Patil had to be satisfied with the bronze, while Himanshu Dhillon, jo apna Asian Games ka debut kar rahe the, unka score 252.4 se unko mila ek silver medal. So a fantastic start for the Indian shooters so far. They have been setting Aichi Nagoya on fire. और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून, होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
2: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान

0: को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
1: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
0: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
0: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल

0: रिमसियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रिमसियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने एक गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh, failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200m freestyle relay mein bhi, Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. To agar dekhe overall, to Bharatiya swimmers ke liye aaj ka din bahut hi nirasha जनक साबित हुआ ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगू में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
0: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगू टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगू प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगू मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगू में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड देयरबाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स।

0: पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसुम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shreeja Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0, and thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन तांबी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वही पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आद्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
2: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya at the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye, aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko, unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko, magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
3: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने

0: कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।